जीवन यात्रा शीतलता बीमा जीवन यात्रा जीवित यही माँ अलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स एफएम अलेना प छेगु जीवन या पला पला नेपकीमा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

0: This is Kips 98.3 FM, your companion.
1: Raja Murti wa Murti na ye wa ne puchhe chang gutu ke.
2: नेपाल भाषाया न्याही पुसेचौ मेता
3: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
4: एक फूल झरे रे के भो एक फूल झरे रे के
5: नेपाली सुपरहिट्स

0: तीस वर्ष देखि इंटरनेट को स्पीड में मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलता में पनि सधैं छिटो वर्ल्डलिंक मनसंग जोड़िएको तार तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्डलिंक.
1: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
2: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
1: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
3: Raja Motiwa Motinaewa Ni Puchi Changutu Kelu.
4: नेपाल भाषा या न्याय पुसिचौ मेत
5: सुथैया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़.

0: हरेक शनिबार बेलुकी 10 बजे
1: किप्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर।
2: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार।
1: एवरी फ्राइडे 12 पीएम।

0: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। साथ में सुन्नुहोस् नेपाली र हिंदी सुपरहिट गीतहरु मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे र मंगलबार बिहान 7 बजे।
1: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
2: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
1: गजल संसार
2: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
3: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे
4: Keeps FM 98.3 megahertz. Your companion. Your companion. Your companion.
5: Three in one. From the movie Buggy.

Life-changing quotes. जब तिमी एक मिनट रिसाउँछौ, तब खुशीका 60 सेकेन्ड तिमी गुमाउँछौ।

0: Number 5.
1: जमाने की तरह हम भी तोड़े हैं गए.
0: मूवी
2: पति पत्नी और वो दो.
0: सॉन्ग
2: हमने वही लगाया दिल.

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: यो हो केप्स 98.3 एफएम तपाईसँगको सहयात्रा
1: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
2: तुझमे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझमे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं
1: एवरी संडे 9 पीएम एंड ट्यूसडे 6 पीएम
3: History of Rock.
4: Monday 3 p.m. Only on Keeps FM 98.3 MHz, your companion.

0: the radio station that keeps you cool, alive and entertained. Kips FM 98.3 MHz, your companion.
1: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
2: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
1: गजल संसार
2: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
3: हर एक शनिवार दिल की 10 बजे
4: स्वस्थ जीवन सुखी जीवन हलेसी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आईआर क्लिनिक सधैं तपाईंसँग
5: अब शल्यक्रिया बिना पनि उपचार सम्भव छ हलेसी क्लिनिक नारायणटारमा आधुनिक इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी सेवा उपलब्ध छ
3: कम दुखाई रगत नबग्ने छिटो र सुरक्षित उपचार नन इन्भेसिभ प्रविधि र उही दिन डिस्चार्ज बायोप्सी देखि ड्रेनेज सम्म न्युड्युल देखि क्यान्सर सम्म उन्नत प्रविधिबाट उपचार
5: खुशीको खबर हरेक आइतबार हलेसी आईआर क्लिनिकमा भेरिकोस भेन पाठेघर स्तन र थायराइडको

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: किप्स 98.3 FM मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे
3: This is Kips 98.3 FM, your companion.
4: Bollywood Golden Hits.
1: Aaj mehfil mein,
0: Gazal Sansar.
1: Gum ka khazana tera bhi hai, mera bhi.
2: Har ek shanivar, dil ki 10 baje.
3: This is Kips 98.3 FM, your companion.
4: Bollywood Golden Hits.

0: FM 98.3 MHz, your companion. Just tune in.
1: 라자 모티와 모티 나이와 네 부시 장구두케
2: नेपाल भाषा या न्यायी पुसे चौमेता
3: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
4: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
5: चलने लगी है हवाएं सागर भी
4: Classic Hindi Pop Time at KIPS FM 98.3.

0: life-changing quotes. आफूले आफैलाई नै कमजोर ठान्नु महापाप हो, यो भनाई हो स्वामी विवेकानन्दको।
1: एक फूल झरेर के भो, एक फूल झरेर के भो।
2: नेपाली सुपरहिट्स

0: This is fun.
1: Ladies and gentlemen, let's put our hands together for the knowledge.
2: Keep 98.3 FM. Your companion.
3: Photography is a hobby, Darshan, not a career. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में।

0: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे
3: यो हो केप्स 98.3 एफएम तपाई सँगको सहयात्रा
4: मिक्स मैक्स एट 98.3

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: प्रॉमिस।

सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल साथ में सुन्नुहोस् नेपाली र हिंदी सुपरहिट गीतहरु मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे र मंगलबार बिहान 7 बजे

0: 101.3 FM.
1: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी.
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग.
3: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग.
4: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल.
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग्स एवरी संडे 9 PM, ट्यूसडे 6 PM.
5: पहला नशा पहला खुमार.
2: स्टेशन गिव्स FM 98.3 MHz.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: हिप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
0: गजल संसार।

Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा

0: आठ बजेसम्म र बुधबार बेलुकी आठदेखि नौ बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला मात्र किप्स 98.3 FM।
1: Keeps FM 98.3 megahertz. Your companion.
2: Chemical X.
3: On Keeps 98.3.
4: Fog at 98.3.
2: Chemical X.
3: Enjoy. X.

0: विश्व जगतमा साताभरि घटेको प्रमुख खबरसँग अपडेटेड रहनको लागि सुन्नुहोस् वीकली रल न्यूज मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्जमा ट्युन इन गर्नुहोस् हरेक आइतबार बिहान 7 बजे अनि हरेक सोमबार बेलुकी 8 बजे
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
2: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: Yoho Kips FM 98.3 MHz.
1: केही नौलो
2: रोचक
1: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरु किप्स 98.3 FM मा कार्यक्रम रेडियोमा रोचक रेडियोमा रोचक
2: हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नु होला मात्र किप्स 98.3 FM मा
3: KIPS FM 98.3 presents Pop Hour.
4: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
3: Every Friday 12 p.m.

0: को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: व्हाट्स द सीक्रेट टु सक्सेस?
3: सिंपल, say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising, affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact.

0: Kips 98.3 FM, your companion.
1: किनारे दूर होते होते बहुत दूर हो गए। पानी के छपाकों की आवाज भी डूब गई। दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है कोई। रूठ गए, नाराज हो गए, हाथ से अंगूठी उतारी, वापस कर दी, बाहों के कंगन उतारे और सात फेरों समेत लौटा दिए। लेकिन वो बाकी जेवर जो दिल में रख लिए उनका क्या होगा।